बच्चे के रोने की कोई भाषा कोई मजहब नहीं होता है। आधार घटते हो खुद ही और फिर चल निकलते हो अभिमान और नफरत करने के लिए। मालिक ने कहां पर बनाए हैं कोई चिन्ह कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है।

FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: और कोई पंजाब सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं, सुविधा जो बुढ़ापा पेंशना उन्मा बीमारी के लोग एक किस्म से भेदभाव हो रहा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2700 रुपये होगी, यहाँ से 1500 रुपये, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। मान ले जो भी विधवा वगैरह सारी पेंशनों में ही फर्क है। और जो अपना एग्रीकल्चर का मान लो सब्सिडी वगैरह देती है सरकार, उसमें भी फर्क है। पंजाब में तो नाम मात्र ही है सब्सिडी जिम्मेदार के लिए। सरकार पंजाब में हरियाणा में बहुत फर्क है अभी।
1: तो मतलब आप लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी योगों पंजाब में गया।
0: हाँ
1: तो जिस तरह यहाँ के बच्चे हैं, गांव के बच्चे, जिस तरह स्कूल में तो आसपास चली यहीं चले जा, तो कॉलेज में पढ़ने वास्ते उन्होंने अम्बाला जाना पड़ा या कहीं डेरा बसी जाना पड़ा। तो कॉलेज में जाने वास्ते उनके पास कितनी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की, बस सर्विस कितनी, ऑटो सर्विस कितनी है कॉलेज में जाने वास्ते?
0: गांव से ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं। एक सवेरे एक टाइम बस आती है हरियाणा रोडवेज की, उसमें ही कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ जो रह जाते हैं वे अपने व्हीकल से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं। और कोई साधन नहीं है पंजाब सरकार का, तो एक कोई भी नहीं, मतलब एक व्हीकल भी नहीं है कि यहाँ भी यहाँ कोई आता हो। और पंजाब में ना ही बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉलेज 35 किलोमीटर है। बच्चा नहीं चाहता कि एक कॉलेज तो पढ़ रहा है 8 किलोमीटर, एक पढ़ रहा 35 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर क्यों जाएगा? तो तकरीबन 95% बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं अम्बाला कैंट में अपने। और हरियाणा सरकार को तो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा इन हिस्सेदारी तो हमारी पंजाब में है। हरियाणा को तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अभी कोई ट्रांसपोर्ट, मतलब 2 बजे या 1 बजे वापिस गाँव के लिए भी लगा दे, जैसे सवेरे 1 है तो उसमें हरियाणा के भी कई गाँव पढ़ते हैं। ये बात नहीं है, पहले हम जाके भी आए एक दो जगह, आश्वासन दिया है। चलो भाई, मतलब आम बंदा आवाज ही उठा सकता है, सरकार के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब भी हमारी तो एक रिक्वेस्ट ही है सरकार से, ज्यादातर हरियाणा सरकार से ही करते हैं हम, क्योंकि यहीं हमारा सारा लेन देन है और सारा कुछ यहीं से है। अभी हमारे बच्चों के लिए एक दो तीन टाइम और बस लगा दे तो थोड़ी सी इनको सुविधा हो जाएगी।
1: तो आपने जिस तरह बताया अभी मानू बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आप इस बारे में सरकार से क्या निवेदन करना चाहा, अभी सरकार हमारी किस प्रकार से सहायता कर सका?
0: देखो, हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, यहाँ से बॉर्डर पे हमारा गांव है। और हम तो अपनी पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट ही करते हैं, और हरियाणा से भी, और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने नहीं कोई अपना ट्रांसपोर्ट का यहाँ से कोई सिस्टम कर रखा कि कोई जिससे बच्चे स्कूल जा सका थोड़ा सा। मतलब जब बच्चे पढ़ाएंगे, यदि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा पंजाब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा एरिया कहाँ तक है, और उनको उनका फर्ज भी है और हमारी मांग भी है। अभी ये कम से कम जहाँ तक उसका एरिया पड़ता है वहाँ तक बस या कोई मिनी बस तो ऐसा कुछ हो जाए जहाँ से जायज का बंदा आसानी से कॉलेज अपना जो भी कचहरी का काम है। और हरियाणा से भी यही प्रार्थना करते हैं हरियाणा सरकार से के कोई मतलब दो तीन टाइम बस और लगा दे, और इस जो रूट हमारा गांव जिस रूट पे पड़ता है इस पे आगे हरियाणा के गांव भी काफ़ी हैं, उन बच्चों को भी लाभ होगा, हरियाणा को भी। हमारा तो इसमें फायदा है ही है, हरियाणा का भी फायदा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है हमारी हमारे पूरे एरिए की केंद्र सरकार से, ये है कि जो ये गांव हैं जिनके तीन पास से हरियाणा लगता है, हमारी बोली भी हरियाणा की है, सारा लेन देन जो भी हमारा बैंक का ला लो या अपनी फसल का ला लो, सारा कुछ हरियाणा में है। हम सिर्फ पंजाब में सरकारी काम के लिए जाते हैं। इस करके केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे 5-10 गांव जो से हरियाणा के पास पड़ रहे हैं, पास क्या है, बिल्कुल अंदर बढ़ गए हरियाणा के, तो 6 गाँव, तो इनको अगर हरियाणा में ले लिया जाए तो हमारा जीवन और मतलब सुखमय हो जाएगा। यही सारे गांव की भी मतलब पूरे एरिया की डिमांड है हमारी केंद्र से सरकार से, अभी हमें हरियाणा के साथ लिया जाए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह जानकारी दी, सरकार आपकी आवाज सुनागी और आपकी मदद करागी। आज हम बात करांगे गांव के जीवन के बारे में, और मारा आज का कार्यक्रम आओ गांव चले। तो गांव के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता आज हम पहुंचे हैं गांव रजापरमा, जहां हम बात करांगे राम किशन जीते, और जिनकी उम्र हो रही 70 वर्ष। राम राम ताऊ।
2: राम राम जी।

0: और ताऊ ठीक ठाक।
1: सही।
0: तो ताऊ मैं आज तेरे यूं पूछना चाहूं भी जोन सा आज का गांव का रहन सहन है और जोन से मारे पहला के टाइम मोए कराते उनमें कितना फर्क पड़ा।
1: हमारे टाइम में तो बेटा जब हम स्कूल में जाया करते थे साइकिल भी प्राप्त नहीं होती थी हमारे, हम पैदल जाया करते थे। और यहाँ से गांव सरसेड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, हम वहां पर पैदल जाके स्कूल में पढ़ाई करते थे क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल था। इसके बाद हम 5वीं से 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक हमने कहाँ पढ़ा है, सरसेड़ी में। सरसेड़ी में 10वीं क्लास जाने के बाद उससे आगे स्कूल नहीं था, फिर हमें अम्बाला कैंट पढ़ना पड़ा।
0: तो ताऊ मतलब तने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी हुई या? ठीक
1: मैं 10+2 तक पढ़ा हूँ।
0: बात ताऊ। तो 12वीं के बाद तने फिर कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू करी?
1: ना बेटे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कॉलेज में पढ़ सकता, ये 12वीं भी बहुत मुश्किल से की है, इतनी घर में गुंजाइश नहीं थी। ये गांव बिल्कुल, यहाँ हर एक मकान कच्चे थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, फसलें नदी बर्बाद कर देती थी। यहाँ तो बहुत मुश्किल जीवन व्यतीत किया हमने अपने टाइम में। आज के टाइम में बहुत सहूलियत है, गांव में सड़कें भी बन गई हैं, पक्के मकान भी बन गए हैं। उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है।
0: ठीक बात ताऊ। तो ताऊ तन्ने अपने बारे में बता दिया अभी गांव के माहौल में कितना फर्क पड़ा। तो इस माहौल के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हम एक और ताऊ ते बात करांगे। राम राम ताऊ। तो ताऊ आपका नाम क्या और आपकी उम्र कितनी हो रही है? ठीक
2: मेरी उम्र 74 साल, पूर्णचंद मेरा नाम है।
0: बात ताऊ। तो ताऊ जिस तरह तेरी उम्र 74 साल हो रही तो तन्ने बहुत पिछला टाइम भी देखा और जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा यो भी देखा। तो ताऊ मैं तेरे यूं ही पूछना चाहूं भी तन्ने अपनी जिंदगी में कितना फर्क देखा अभी पहला तेरी जिंदगी कैसी थी और आजकल के मारे न्याणे की जिंदगी में कितना फर्क देख रहा। तो तन्नु वह टाइम अच्छा लगा था आ कि टाइम बढ़िया लग रहा?
2: टाइम तो वह भी अच्छा था बेटे, यही अच्छा, थोड़ा थोड़ा हर चीज तो मिल जा। पहले तो कोई सामान इतना मिला था, कोई बहुत दिक्कत थी, मतलब रेते माँ जाना, रेते माना, पानी में चलना सारा दिन, वह नहीं बताऊँ और क्या बेटे, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था।
0: ठीक बात आऊ। तो रहन सहन के बारे में थोड़ा सा बताओ अगर श्रोता नु भी, तो खाने पीने का किस तरह बदल गया, हमारा पहनावा कितना बदल गया, अरे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आगा।
2: बहुत ज्यादा ही बद गई तो बेटे, पहला कहा कपड़ा भी नहीं इतना मिला था, क्या एक कुर्ता तो थी मिल गई, 1-6 महीने वही आदमी पहरे, पैर में जूती नहीं मिला थी, कहीं जहाँ देता तेरे भर के भाई किसी की मांग का जाना ये काम हुआ थे बेटे, यहाँ से पैदल जाना सीधा बेब्याल को, ये हालत कोई सवारी का साधन नहीं था, कोई नई बात है और कुछ नहीं बेटे, जो पढ़ाई लिखाई है बताई है वही है बस।
0: ताऊ पहला यातायात के साधन बहुत कम हुआ थे और बुजुर्ग जोन से मारे पहले बंदे थे उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा था।
2: यहाँ यहाँ बैठे, यहाँ तो पानी की टक्कर लगती नदी की, ऐसे पानी फैलता था इसके गांव के चारों चिगर था, ये सरसेड़ी परसेड़ी ये सब इधर अंटाड़ा सब में पानी घूमता था, फसलें सब नष्ट हो जाती थी, खाने में कोई बहुत बहुत दिक्कत आती।
0: राम किशन ताऊ जी आपते पूछना चाहूं भी जोन सा आपका गांव आ रजा पर इसमें क्या खास बात अभी और गांव ते अलग?
1: ऐसा जी, गांव रजापुर जो है बिल्कुल छोटा सा गांव है, बहुत अच्छे आदमी, इसमें कोई चोरी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, ये शरीफों का गांव है।
0: ठीक बात। तो मतलब थारा गांव शरीफा के गांव के नाम ते
1: बिल्कुल
0: बजा?
1: बिल्कुल, रजापुर है ये। यहाँ पर पहले दो आदमी होते थे, एक राजू एक खेलू। राजू ने रजापुर बसाई और खेलू ने खेलन बसाई है, गांव दोनों एक ही हैं।
0: तो इस गांव का यो नाम इस कर का पड़ा था,
1: हाँ
0: राजू के नाम ते पड़ा था।
1: हाँ
0: तो ताऊ मैं तेरे ते और न्यू पूछना चाहूं जोन सा यो थारा गांव आ रजा पर यो पंजाब मावा और हरियाणा थारते 7-8 किलोमीटर दूर आ, तो इसके पीछे क्या कारण रहा अभी यो पंजाब में लिया गया?
1: ये तो बेटे हमारी सोधी से पहले की बात है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। कागजों में पंजाब में शुरू से है ये गांव, ये तो बुजुर्ग जानते होने, लेकिन हमें हरियाणा में जितना फायदा है पंजाब से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हरियाणा में हम जाएंगे, पढ़ाई हमारी हरियाणा में है, नौकरी हमारी हरियाणा में है, ना है यहाँ पर बसें मिलेगी कोई, पैदल जाएंगे और टेम्पो में जाएंगे या कोई साइकिल पे जाएगा या थ्री व्हीलर में जाएगा, थ्री व्हीलर में बैठेगा 1.5 घंटा इंतजार करने पड़ेगी, जब तक उसकी सवारी पूरी नहीं होगी तब तक टेम्पो नहीं चलेगा। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी बस नहीं है, एक नारायणगढ़ से दिल्ली के लिए बस जाती है सुबह के टाइम 7 बजे, वो भी हरियाणा की है, लेकिन पंजाब की यहाँ पर कोई लोकल बस नहीं है, कोई सरकारी बस नहीं है, पंजाब से हमें कोई भी इतना बेनिफिट नहीं है। यहाँ से इस गांव से कम 1000 बच्चा अंबाला कैंट ड्यूटी पे जाता है प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहूलियत नहीं, ना हमारे को कोई नौकरी देता है पंजाब में, ना हमें कोई उनकी सहूलियत है। हरियाणा में ज्यादा हमारे बच्चे हरियाणा में ज्यादा नौकरी कर रहे हैं जबकि पंजाब में नहीं कर रहे।
0: ठीक बात तो, मतलब सारे काम हरियाणा में ही, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो,
1: हमारे काम हरियाणा के अंदर ही मिलेंगे। पंजाब में तो ये नाम मात्र के हम नाम है कि हम पंजाब में रहते हैं।
0: ठीक बात तो, मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी भी जोन से हमारी पंचायत हुआ इसके जोन से पहला के फैसले हुए कराते और जोन से इब पंचायत चल रही इसके फैसले, इनमें कितना फर्क पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
1: पहले जो पंचायतें थी हमारी, तकरीबन ज्यादातर किसी की लड़ाई होगी झगड़ा हो गया फैसला यहीं हो जाता। ये डॉक्टर धर्म सिंह के टाइम की बात है, उस टाइम यहाँ के सरपंच थे राजा पर। लेकिन आज के टाइम में हरेक आदमी के अंदर आग इतनी बढ़ गई है कि वो हरेक आदमी थाने की तरफ भागता है। तो अब तो थाने में जाना पड़ेगा और थाना पड़ेगा यहाँ से दूर। पहले लारडू थाना था हमारा, अब हंडेसरे में पड़ता है। तो पहले में और अब में तो बहुत फर्क है। पहले चार आदमी इकट्ठे होके पंचायत के आपस में यहीं पर फैसला कर देते थे, आजकल कोई किसी की मानता नहीं। सीधा थोड़ी सी बात हो जाए किसी से लड़ाई हो जाए, सीधा सरपंच को भी नहीं पूछेगा, वो पहले थाने में पहुंचेगा। आज का टाइम ये है।
0: तो तन्नु अपना वही टाइम पसंद आ तनी, वो टाइम ठीक लगा
1: बेटे? हमारा टाइम तो वो भी ठीक था, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से टाइम ये भी ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी सहूलतें अब हो रही है। हम तो बरसात का टाइम आता था, कोठे पे गारा लगाने के लिए परेशान हो जाते थे। किसी का कोला गिरता था, कच्ची छतें थी, डंडे डार रखे थे छतों पे, कड़िए के मकान थे। और आज एक भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कच्चा है, हर एक का मकान पक्का मिलेगा, हर एक के घर में फर्श मिलेगा। हाँ उस टाइम में ये था, कोई गरीब आदमी है उसके घर में दूध नहीं है, पड़ोसी से मिल जाता था। अब तो जिसके घर में खुद दूध है वो भी दूध नहीं पी सकता, वो डोलू वाला ले जाता है। तो टाइम तो वो भी अच्छा था, जनरेशन के हिसाब से ये भी अच्छा है।
0: तो ताऊ तो आज के मारे जोन से युवा अपने बालक है न्याणे, उन्हें क्या कहना चाहगा भी जिस तरह गलत आदतों में भी पढ़ रहे बच्चे और अपना पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान दे दे, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहा तो भी अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और किस मुकाम तक पहुंचना चाहिए?
1: बेटे हमारा टाइम ऐसा था, अगर किसी अपने बुजुर्ग के अलावा किसी और बुजुर्ग ने भी डांट दिया ना हमारे को, तब भी हम बोलते नहीं थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपने बच्चे को हम खुद नहीं डांट सकते। पहले क्या था हमारे टाइम में, अगर पड़ोसी ने भी डांट दिया हम सीधे उनसे डर के भाग जाते थे। अब किसके बच्चे कहना मानते हैं?
0: बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, तन्ने जानकारी दी और तो आज के युवा ने संदेश दे रहा भी अपने उसी टाइम पर चलना चाहिए जिस तरह हमारे पहला टाइम था, अपना कहना मान्य कराते ताऊ चाचे का भी बहुत डर हो कराता उस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे, हम युवा के साथ बात करेंगे कि युवाओं का जीवन कैसा है और वे अपनी जिंदगी किस तरह व्यतीत कर रहे। राम राम जी।
3: राम राम जी। नेहा जी, पहले तो आपको थैंक्स जो आप हमारे गांव में रेडियो के माध्यम से यहां तक आए। और मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं गांव रजापुर पोस्ट ऑफिस केलन डिस्ट्रिक्ट मोहाली तहसील डेराबसी से रहने वाला हूं।
0: तो प्रवीण जी, जिस तरह आप एक युवा, तो मैं आज आपसे युवाओं के बारे में ही जानना चाहूँ भी जोन से मारे युवा उनका जीवन कैसा है और उन्होंने कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा?
3: कुछ नहीं है जी, ये तो अलग अलग स्टेप होते हैं युवाओं के अनुसार, उसकी कैटेगरी उसके परिवार के अनुसार वो डिप्लोप होती है। जैसे एक परिवार में पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो 80% लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर कल्चर पहली बैकग्राउंड खराब है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने में समय लगेगा। और अगर मैं बात करूँ युवाओं की, हमारे गाँव में 80% युवाओं बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, हम पंजाब में एक 10वीं और 12वीं का स्कूल है, उसके बाद सारी एजुकेशन हम हरियाणा से डिप्लोम करते हैं। और एजुकेशन के बाद अगर बच्चा ग्रोथ करेगा, नौकरी पैसा जो भी लेगा वो भी 90% हरियाणा में लेंगे, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। हम 80-90% प्राइवेट में करेंगे और वो भी मैक्सिमम हरियाणा में करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, हमारे गाँव से जो डेराबसी कॉलेज है, और कोई आसपास पंजाब का कॉलेज नहीं होगा डेराबसी, जो हमारे से 35 किलोमीटर दूर है। अगर यही बात हम हरियाणा से बात करेंगे तो हमारे से 7 किलोमीटर दूर SD कॉलेज है, एक कॉलेज नहीं, चार कॉलेज है। इवन जो मेरी, जैसे बात करूंगा, छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, माता जी, जो हमारी सिस्टर बुआ जी हैं, जो पढ़ नहीं पाई, वो भी हमारे से 10 किलोमीटर कॉलेज आ रहा, अगल कॉलेज, वहाँ स्टडी होप कर लेती वो, अगर हमें सहूलत मिलती।
0: तो मतलब आप यूं कहना चाह रहे भी पढ़ाई लिखाई मानु यातायात की सुविधा नहीं है, आने जाने में दिक्कत हुआ, और इसकी वजह से शिक्षा शायद कहीं ना कहीं कम रहेगी।
3: यस मैम, जो आपने कहा है तो 100% यही कारण है इसके पीछे, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो बच्चे रेडी हैं, पर जो उसको आवाज आएगा, जो साधना 4 घंटे सर्वाइव करेगा, वो कैसे करेगा? ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने का कारण भी मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा पंजाब का उसको पास लेना पड़ेगा, जो 2 सरकार का गेट पास लगेगा, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी होती है, जिसके कारण कोई प्राइवेट भी उसमें बस की सुविधा नहीं दे पाएगा। अगर सिंगल होता तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कम लगेगा और जिसके कारण सुविधा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, लोकल है तो अपने पास किसी गाड़ी या किसी बाइक है, वो अपनी साधन से जो मर्जी जाए, वो तो उसके पेरेंट्स के बदौलत बच्चे स्टडी कर रहे हैं।
0: तो आप सरकार से यूं ही कहना चाहा भी, मानो शिक्षा प्राप्त करने वास्ता साधन भी मिलने चाहिए और हमारे आसपास भी कोई कॉलेज होना चाहिए।
3: राइट मैम, सारे कॉलेज हैं, एसडी कॉलेज है, जीएमएन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्यागल कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, अग्रसेन कॉलेज है, 7 कॉलेज गिनवा दिए मैंने 8 किलोमीटर के अंदर, और पंजाब के अंदर एक कॉलेज है डेराबसी 35 किलोमीटर की दूर, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? अब दोबारा आओ प्राइवेट सेक्टर की बात, अगर मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ से मेरे 6 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ 400 कंपनी है, कोई गैस की, कोई लोहे की, कोई साइंस की, तो मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने पैदल भी जा सकता हूँ अगर घर से कमजोर हूँ, और उसके बाद 2000 की साइकिल लेके भी जा सकता हूँ। बट पंजाब सरकार में मैं नौकरी कहाँ करूँगा? 40 किलोमीटर दूर डेरा बसी से इंडस्ट्री एरिया लगता फेस पे, ट्रिब्यून चौक पे, और यहाँ से वो 60 किलोमीटर दूर, मुझे आने जाने का बताओ कैसे करूंगा मैं?
0: तो आपकी सरकार से क्या मांग, आप क्या गुहार लगाना चाहें सरकार को?
3: देखो मैं तो दोनों ऑप्शन बता दिए आवाज के जरिए, आपके रेडियो के जरिए भी। पहला ऑप्शन ये, या मुझे कॉलेज के पास ले जाओ मेरे बच्चों को, ताकि वो स्टडी कर लें, नहीं ले सकते मुझे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं एजुकेशन खुद ले लूं। दोनों सरकार के पास है, और केंद्र सरकार के हाथ जोड़ निवेदन करूंगा मैं कि जो ऑप्शन सही लगे वो मुझे एग्री होना चाहिए। अब थाने कचहरी की बात करूं, जैसे सरपंच साहब ने ओवरऑल कवर कर ही लिया मेरा, अगर मेरी DL या RC कोई भी चीज बनवानी पड़ेगी, मुझे डेराबसी जाना पड़ेगा जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, अगर यही चीज मुझे बनवाने के लिए ये 6 किलोमीटर दूर है, मुझे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और एक दिन की 400 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, मैं आसानी से जा सकता हूँ लंच टाइम में भी, क्योंकि मैं तो जॉब फैक्ट्री में कर रहा हूँ ना, कंपनी में एक छोटी सी जॉब, तो लंच टाइम का पीरियड होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर मैं कचहरी में जा सकता हूँ, बट वहाँ मुझे 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन सरकार के पास है देखो, और हम यहाँ बैठे हैं और आवाज केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ऑलमोस्ट पहुंच चुकी होगी। अगर मुझे गांव के अंदर एक नाला बनवाना पड़ जाए, मेरी सरपंच सुनवाई ना करे, कोई सुनवाई ना करे, मुझे MLA के पास जाना पड़ेगा ना। MLA कहाँ बैठता है मेरा? चंडीगढ़ डेराबसी। वो हमने आवाज आप तक पहुंचाई थी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छा निकले और हम आगे बढ़ने की बात करें। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है भी, हम आगे जब बढ़ेंगे, जब देश हमारे साथ हमें आगे बढ़ाएगा और हमारी सरकार कोई निष्कर्ष निर्णय लेगी, हरियाणा ले या पंजाब ले, उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं सर्वाइव करेंगे, अगले 70 साल भी आप आ सकते हैं। जब मैं 70 साल कहूँगा तो आप मुझे यही क्वेश्चन करना और मैं यही आंसर दूँ सेम जो मेरे बाबा जी ने दिया और जो सरपंच साहब ने दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने जो इतनी जानकारी दी और अपने बारे में बताया, और जो उनसे देश के युवा उनके बारे में भी मैं किस तरह आगे बढ़ सका।
3: देखो देश तो आगे आज भी बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ रहा था, बट हमारा गाँव आगे पहले भी नहीं बढ़ रहा तो आज भी नहीं बढ़ रहा। पहले बड़ा होता तो बाबा जी बोलते बड़ा हुआ है, उसके बाद 20-40 साल का गैप सरपंच साहब बोलते और मैं भी सेम बोल रहा हूँ, और मेरे आने वाले बच्चे भी यही क्वेश्चन करेंगे।
0: प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे से बताया भी मान यो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो इसका हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे भी जो आपकी दिक्कत है वह सरकार सुना, और जो भी सरकार उसका फैसला लेवागी तो आपके वो फैसला, और जिस तरह हम यहाँ आपके गोमाए तो मारी है जोनसी आने की यहाँ वजह व सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू नेहा जी, जो आपने कहा, देखो सफल तो जब भी होगी जब आवाज उठाएंगे, आपका नाम ही पहले आवाज है, आवाज उठेगी तो वो कुछ ना कुछ ले ही होगी डिसीजन, और ये निष्कर्ष मेरा नहीं है, विलेज राजापुर से मैं हूँ, मेरे पास वाला गाँव खिलन है और उससे पास वाला अंटाड़ा, मालन, जोधगढ़, इवन सारंगपुर, ये सारे के सारे 6-7 गाँव है जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, और ये मेरा मतलब एक मेरी तकलीफ नहीं है, 7 गाँव की सेम यही है, आपकी आवाज उठेगी, आपकी आवाज की सुनवाई होगी, तो ये सात गांव आपका एहसान मंद रहेंगे पूरी लाइफ। हम भी अगली पीढ़ी को ये बोलेंगे भी आवाज से हमारे पास आया और हमारी आवाज केंद्र सरकार को गई और उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी।
4: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सेजल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंजाब के एक गांव रजापुर में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के पंच और सरपंच। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में।
5: नमस्कार जी, मैं गांव रजापुर से और राज सिंह बोल रहे हैं, सरपंच से तहसील डेरावासी जिला मोहाली।
4: सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में अगर हम कृषि की बात करें तो इस समय कौन सी फसलें लग रही हैं और क्या कृषि के लिए तैयारी हो रही है?
5: मेरे गांव में जीरिया लगी हुई है अभी और चरी बाजरा है जो भैंसों के लिए और गन्ना है, बस मुख्य फसलें यही है ज़्यादा।
4: और जैसे फसलों के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो पानी की क्या सुविधाएँ हैं आपके गाँव में? से
5: गाँव में किसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं और एक सरकारी बोर है, वो भी बिना देख रेख के ही चल रहा है रबरों से। बाकी कोई नहरी पानी नहीं है, जैसे पंजाब एक खुशहाल प्रदेश है, यहाँ से कोई नहरी पानी का कोई कभी देखे ही नहीं किसी ने, कभी नहरी पानी का होता है। और हमारे साथ तो यहाँ से बहुत ही सरकारों ने पहले से वो कह नहीं देते सौतेला व्यवहार कर रखा। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तो उनसे जो मर्जी को हल हो, नहर भी आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं।
4: जैसे अभी बारिश के मौसम में काफ़ी सारे गांव बारिश की वजह से प्रभावित हुए थे, तो उस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आपके गांव को कोई दिक्कत आई?
5: बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, गाँव में पानी भी बढ़ा है और डांगरी नदी ने भी बहुत, मतलब जो उपजाऊ जमीन थी उसका बहुत नुकसान करया है। तकरीबन 40-50 साल बाद इतना पानी देखने को मिल रहा है जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, इससे पहले तो कभी इतना पानी आया नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे इसको बात न हो चाहे आप काट भी दियो, मतलब कोई वो नहीं है, जो सच है तो वो सच है। इब की बार इस बरसात में जो अपना मेहजनगर का पुल है उसने डुबोने का काम कराया है, जो अपना सरसेड़ी में पानी बढ़िया वो पुल के कारण बढ़िया है। आप मतलब सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए, उसके मैंने उसके नीचे जाके खुद देखा है, उसके 8 पिलर हैं, मतलब 8 दरवाजे ला लो आप, उन 8ों में से 4 बंद है और 4ों में का पानी निकलता है और 4 बंद हैं, तो पानी तो कहीं ना कहीं रास्ता चाहेगा। वहाँ पानी पूरा ना निकलने के कारण जो सुसेड़ी में पानी बढ़िया है वो सारा वहाँ की नाकाम भी है, वहाँ से निकासी बंद हो ही है, वो सरकार का काम है देखना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये मेरी मतलब आवाज़ ना काटा तो आप बढ़िया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। पूरी हमारी कैंट की अंबाले की इंडस्ट्री डूबी है इसी के कारण, 20-25 गांव जो डांगरी का तकरीबन 3 इंच से पानी इधर से गया, 1 इंच से पानी उधर गया।
4: तो इस वजह से गाँव के कितनी प्रतिशत जमीन और फसलें प्रभावित हुई?
5: मेरे गांव में तकरीबन 30% फसलें का नुकसान हुआ है और तकरीबन 15% जमीन खराब हुई है जो खेती के लायक रही नहीं है।
4: तो जैसे कि आपने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया, तो इसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला या सरकार की तरफ से कोई सुविधा प्राप्त करवाई गई है आपको?
5: नहीं, अभी तो कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं कराई गई है। पहले भी जो अपनी कणक की फसल में बरसात हुई थी तब भी सरकार ने फार्म वगैरह भरवाए थे, कोई मुआवजा नहीं दिया और अब फिर सरकार ने फार्म भरवा रखे हैं जिसका नुकसान हुआ है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, आगे देखो सरकार क्या करती है।
4: अब हम बात करते हैं इस गांव से जुड़े स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में, तो पहले हम यहाँ के पंच से पूछना चाहेंगे कि इस गाँव में क्या क्या स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उन्हें मिलती है।
6: नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं यहाँ का पंच हूँ जी। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा कोई नहीं है जी, यहाँ सिर्फ यहाँ से पहले भी जिस सरपंच साहब कह चुके हैं, यहाँ से सरकारी अस्पताल डेराबसी पड़ता है जी 40 किलोमीटर और हमारी तो सारी आबादी यहाँ की गांव की सिविल हॉस्पिटल पर ही डिपेंड करती है जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, यहाँ सिर्फ हरियाणा पर ही डिपेंड है जी।
4: इस बारे में सरपंच जी आपके क्या विचार?
5: जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, सारी इसमें सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ तो सरकारें बोलती हैं कि एक देश कैसे हुआ, ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मतलब सेंटर सरकार की स्कीम है, बोल रही है कि भी कहीं भी इलाज कराओ। और हम पंजाब में हैं, हमारे से नज़दीक पड़ता है हरियाणा का हॉस्पिटल, हम वहाँ जाते हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं चलता वहाँ पे, तो हम कहाँ जाए करके बहुत मुश्किल है। और पंजाब सरकार आई है कि मतलब दिल्ली का मॉडल लेके आई थी कि हाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर से इधर तो कोई अब तक खुलिया नहीं है। मतलब लालडू अपना हॉस्पिटल एक छोटा सा यहाँ पे अंटाला में है, अंटाला भी 3-4 किलोमीटर है, वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं अब तक हैं, कोई मरीज मतलब जाएगा तो उसको पूरी दवाई नहीं मिलेगी, फिर उसको हरियाणा में आना पड़ेगा, वो क्यों जाएगा वहाँ से उल्टे पास।
4: तो आप हमारे रेडियो के माध्यम से दोनों सरकारों को और केंद्र तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं?
5: मैं तो ये संदेश क्या, हमारी तो प्रार्थना है सरकारों से, अभी गरीब माफ ना करे, अमीर तो अपना इलाज करा लेगा, पैसे दे के कहीं भी करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जिसका आयुष्मान कार्ड बन गया है वो तो अपने घर बैठा बेफिक्र होगा, अभी मेरे पास तो कार्ड है और मेरा इलाज हो जाएगा। और जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कुछ नहीं, वो कहाँ एट ए टाइम उस टाइम मरीज को संभाले या पैसा देखे, कहाँ क्या करेगा वो। मतलब मेरी तो यही है प्रार्थना कि जो पंजाब का आयुष्मान कार्ड है वो हरियाणा में भी चले, यूपी में भी चले, दिल्ली में भी चले, जिससे अपना बीमार आदमी अपनी दवा बुट्टी करा सके।
4: आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या कोई सुविधा आप चाहते हैं सरकार के द्वारा आपको दी जाए?
5: अगर जैसे हम पंजाब में हैं, लास्ट गांव है, यहाँ से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए जिससे मतलब फर्स्ट एड मिल जाए बंदे को, थोड़ा फिर मतलब राहत मिले आदमी, फिर अपना कहीं भी इलाज करा ले, ये मतलब छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलना जरूरी है यहाँ पे।
4: जैसे इस वक्त हरियाणा में डेंगू के केस और पंजाब में डेंगू केस ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आपके इस वक्त आपके गांव में क्या स्थिति है सर?
5: बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब 100-150 मरीज पड़े होगा हॉस्पिटल में, और मैंने एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फोन भी किया है, इस ऐसे ऐसे करके मेरे गाँव में पड़े हैं मरीज, कोई मतलब स्प्रे करा दे या कोई दवाई का इंतजाम कर दे कुछ भी, मतलब अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, ना कोई पूछ सुध लेने आया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वहीं बैठे रिपोर्टें दे देते हैं, सब ठीक है यहाँ पे।
4: आप इस समस्या से इस वक्त कैसे इसका समाधान निकाल रहे हैं खुद ही, और क्या क्या चीजें आपने अपनाई है?
5: समाधान तो कुछ नहीं है जी, यही अपना हरियाणा के हॉस्पिटलों में पड़े हैं बंदे, अपना इलाज करा रहे हैं, अपने मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना।
4: तो ये थे रजापुर गांव के सरपंच जिनसे हमने बात करी और जाना किसानी के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करते हैं इनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द इन्हें सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी।
7: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, रेडियो वितस्ता 90.0 FM से, और आज हम आधिकारिक रूप से आए हैं गाँव रजापुर में, जो तहसील डेरा बसी पंजाब राज्य में पड़ता है। ये गांव अंबाला कैंट जो हरियाणा में पड़ता है, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने आज गांव के अलग अलग लोगों से बात की, जो अलग अलग उम्र के हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, और जो लोगों से हमने बातचीत की उससे हमें एक अलग ही एक तस्वीर सामने आई कि एक गाँव जो किसी राज्य के बॉर्डर पर है और दूसरे राज्य के नज़दीक है, उन लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ऑफिशियली कोई काम करना पड़ता है तो उनको 35 किलोमीटर दूर या तो डेराबसी जाना पड़ता है या उनको 60 किलोमीटर दूर मोहाली जाना पड़ता है। जब ये लोग यहाँ पर अस्वस्थ होते हैं तो इनके लिए सबसे नज़दीक हरियाणा में जो अम्बाला कैंट के अंदर हॉस्पिटल है वो आता है, उनको वहाँ जाना पड़ता है जो केवल 7 या 8 किलोमीटर दूर है। जहां तक हमने देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात हमने की, पंजाब सरकार की ओर से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यहाँ के लोग अपना ट्रांसपोर्ट यूज करके जो कोई इनको काम करना है, चाहे इनकी बच्चों की पढ़ाई है, चाहे इनका रहन सहन है, चाहे इनके लिए घरों के लिए सामान लाना है या जमींदारी के लिए कोई सामान लाना है, तो ये निर्भर पूरी तरह से हरियाणा राज्य के जिला अंबाला पर है। इन लोगों की बात हमने आज सुनी है, रिकॉर्ड की है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बात पंजाब सरकार तक देंगे, हरियाणा सरकार तक देंगे और केंद्र सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक जरिया है जिस जरिए के माध्यम से हम लोगों की बात बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकारों तक पहुंचाते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। जब बुजुर्ग कहते हैं कि आज से 70 साल पहले ये गांव वैसा ही था और एक युवा जो 30 या 35 साल का है वो भी यही कहता है कि आज भी गांव वैसा ही है, और उनका कहना है कि अगर हमारा बच्चे से कल आप पूछोगे 15 साल 20 साल के बाद वो भी यही बात कहेंगे, तो ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सभी सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस गांव के बारे में सोचे, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज हमें इतना सारा समय दिया, आप सभी लोगों का रजापुर गांव से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन

विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ आखिरी वक्त तक विमान में ही रुके रहे ताकि घनी आबादी वाले अंबाला शहर में वो विमान को गिरने से रोक सके। उनके इस सूझबूझ भरे निर्णय से न जाने कितने अंबाला वासियों की जानें तो बच गईं, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ को अपने प्राण

जो मुखर्जी का जन्म झांसी में 24 फरवरी सन 1939 को हुआ था, अपनी पढ़ाई देहरादून में मुकम्मल की। अपना फिल्मी करियर सन 1960 में फिल्म लव इन शिमला से शुरू किया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी साधना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जॉय मुखर्जी को रोमांटिक आइकॉन के तौर पे एक खूबसूरत पहचान मिली थी। फिल्म लव इन शिमला के बाद सन 1963 में फिल्म आई फिर वही दिल लाया हूँ, सन 1964 में जिद्दी, सन 1966 में लव

सन 1967 में शागिर्द और एक मुसाफिर एक हसीना। उस वक्त की टॉप हीरोइनों में आशा बारिक, सागर बानो और साधना के साथ जॉय मुखर्जी को काम करने का बेहतरीन

सन 1977 में फिल्म छेड़ा बाबू एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पे जॉय मुखर्जी ने ये फिल्म पेश की। ये फिल्म गोल्डन

जय मुखर्जी ने नीलम के साथ शादी की थी। मोनोजॉय और सुजॉय जय मुखर्जी के दो बेटे हैं और जॉय मुखर्जी की एक बेटी भी है।

0: के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत
1: जोएल मुखर्जी की होम प्रोडक्शन में फिल्म हमसाया और एक बार मुस्कुरा दो, ये दोनों फिल्में कामयाब साबित हुई।

राजेश खन्ना और जय मुखर्जी दोनों दोस्त थे। राजेश खन्ना ने फिल्म इंसाफ मैं करूंगा में जॉय मुखर्जी को विलन का रोल ऑफर किया। फिर क्या था, जॉय मुखर्जी ने ये रोल एक्सेप्ट किया।

0: यही तो मालूम नहीं है।
1: हमसे सुनो,
2: फिल्म लव इन शिमला, हम हिंदुस्तानी, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, आओ प्यार करें, जी चाहता है, इशारा जिद्दी, दूर की आवाज, बहू बेटी, लव इन टोक्यो, ये जिंदगी कितनी हसी है, साजो आवाज, शागिर्द, एक कली मुस्काई, हमसाया दिल और मोहब्बत, दुपट्टा आग और दाग, एहसान, इंस्पेक्टर, मुजरिम, पुरस्कार, कहीं आर कहीं पार, एक बार मुस्कुरा दो, हरिवान, छैला बाबू, फूलन देवी, इंसाफ मैं करूंगा, लव इन बॉम्बे, ये कामयाब फिल्में साबित हुई जिसमें जॉय मुखर्जी ने बेहतरीन अदाकारी के जलवे अपने चाहने वालों तक पहुंचाए।

जॉय मुखर्जी अपने जमाने के सबसे खूबसूरत एक्टर माने जाते रहे हैं। 6'2" उनका कद था, गोरा रंग और उनकी अदाकारी लाजवाब, बेमिसाल साबित।

73 साल की उम्र में 9 मार्च सन 2012 जॉय मुखर्जी मुंबई के लीलावती अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कहा। जॉय मुखर्जी एक खास बीमारी में मुब्तला

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: बोलेगा तो।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। भिंडी की फसल पर बढ़ सकता है सफेद फफूंद का खतरा। संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें। गर्मी के बीच बार बार मौसम के बदलाव से भिंडी की फसल में सफेद फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का खतरा है। करनाल क्षेत्र में कुछ जगह बागवानी विभाग टीम को यह लक्षण भी मिले हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण करें और रोग के लक्षण दिखने पर नियंत्रण करें। प्रदेश में करीब 12,480 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की खेती की जाती है। पिछले वर्ष लगभग 1,34,143 टन उत्पादन दर्ज किया गया था। अंबाला, नूह, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और भिवानी भिंडी उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि सफेद फफूंद रोग की शुरुआत पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बों से होती है। धीरे धीरे यह पत्ती को ढक लेता है जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सल्फर का छिड़काव प्रभावी उपाय। किसानों को सलाह दी गई है कि रोग की रोकथाम के लिए किसान सल्फर 80% WDG का 3-4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बचें। संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना भी लाभकारी रहता है। भिंडी का गर्मियों में उत्पादन बढ़ने पर मंडियों में सामान्यतः 15-30 रुपए प्रति किलो भाव रहता है, जबकि बरसात या ऑफ सीजन में यही भाव 40-60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। गुणवत्ता वाली कोमल भिंडी को अधिक कीमत मिलती है। 40-60 दिन में शुरू हो जाती है तुड़ाई। 40-60 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार बुवाई के बाद

लगातार कई सप्ताह तक उत्पादन मिलता है। स्थानीय बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। गेहूं धान चक्र से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर वैकल्पिक फसल मानी जाती है। मूंगफली की बिजाई का सही समय। मूंगफली की बिजाई का सही समय जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी कर लें। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 बोने की सिफारिश की जाती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली की बेहतर पैदावार के लिए प्रति एकड़ बुवाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट ड्रिल करें। जिप्सम का प्रयोग भी लाभकारी है। दीमक और सफेद लट से बचाव के लिए बीज उपचार अवश्य करें। जरूरत से ज्यादा कीटनाशक व खाद डालने से मर जाते हैं मिट्टी के मित्र। फसलों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएगा उत्पादन। आधुनिक कृषि में जब भी फसल उत्पादन बढ़ाने की बात होती है तो अमूमन हमारा ध्यान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश युक्त NPK रसायनों पर जाता है। मिट्टी का अपना माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीव संसार हो रहा है। ऐसे में यदि ये पूरी तरह से नष्ट हो गया तो करोड़ों रुपए की खाद भी फसलों को जीवन नहीं दे पाएगी। उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर किरण करनाल के अनुसार रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी का जैविक ताना बाना पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया या कीटनाशक डालते हैं तो मिट्टी के मित्र बैक्टीरिया और कवक मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी ऊपरी तौर पर तो मौजूद रहती है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और फसलों पर कीटों का हमला बढ़ जाता है। किसान पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर सॉइल बायोलॉजी को समझें और जरूरी वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना जरूरी। क्रॉप रोटेशन का वैज्ञानिक आधार। मिट्टी में कार्बन का स्तर कम से कम 0.5 से 0.75% होना जरूरी है। इसके लिए ढेंचा, मूंग जैसी हरी खाद, केंचुआ खाद और फसल अवशेषों को खेत में ही गलाएं। कार्बन मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी का माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। दलहनी फसलों की जड़ें राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का रुख PSB और एजोटोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। पौधों को मिलेगा सुलभ भोजन। स्वस्थ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जटिल पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन में बदलते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन बेहतर होता है। बेलों के नीचे घास फूस या फसल अवशेष बिछाएं, होगा गर्मी से बचाव। 30% तक नुकसान घटाने में रहेगी मददगार। बढ़ती गर्मी बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए चुनौती बन रही है। मई जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने पर लौकी, तरबूज, खरबूज, खीरा, तोरई, करेला और कद्दू जैसी फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगती है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय में अंतराल पर सिंचाई इंटरवल इरिगेशन तकनीक फसलों को गर्मी से बचाने में कारगर साबित हो रही है।
इस तकनीक में मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई की जाती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। इससे पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मल्चिंग भी उतनी ही लाभकारी है। बेलों के नीचे घास फूस या फसली अवशेष बिछाने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम खैरवा ने किसानों को सुबह या शाम सिंचाई करने की सलाह दी है। यह है इंटरवल इरिगेशन। इस तकनीक को रुक रुक कर सिंचाई करना भी कहा जाता है, जहां खेतों को लगातार पानी देने के बजाय निश्चित समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है किसानों को, कुछ ना कुछ व्यापारी हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 6। आज के लिए शीर्षक है रिश्ते कमजोर कर सकता है मजाक उड़ाना। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरनी का एक और एपिसोड। आज का टाइटल है रिश्ते कमजोर कर सकता है मजाक उड़ाना। कभी हंसना कभी हंसाना, यही तो है रिश्ते का हुस्न। लेकिन जब हंसी किसी की खुद पर पड़ जाए बारी, जब मजाक बन जाए किसी की कमजोरी, तो रिश्तों की दीवार में दरार आ ही जाती है। रिश्ते कमजोर कर सकता है एक दूसरे का मजाक उड़ाना। दूसरों के सामने एक दूसरे का उपहास हंसी के साथ साथ मनमुटाव का कारण भी बन सकता है। रिश्तों की ताकत विश्वास, सम्मान और भावनात्मक नजदीकी में है। संबंधों के तार ऐसे मजाक में कमजोर हो जाते हैं। परिहास और उपहास में अंतर होता है। हंसने, मुस्कुराने और जिंदगी को सहज बनाने के लिए मजाक बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा मजाक नहीं जो किसी को चोट पहुंचाए, रिश्तों में कड़वाहट ले आए। लेकिन अक्सर जीवन साथी एक दूसरे के विषय में निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में कई बार ऐसी बात कह जाते हैं जो उस वक्त तो उन्हें मजाक के दायरे में लगती है, लेकिन वो रिश्तों के सम्मान के दायरे में बाहर होती है। ये मजाक जीवन साथी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है। एक मजाक रिश्ते को हिलाकर रख सकता है। विश्वास टूटता है जब पति पत्नी लगातार एक दूसरे का सार्वजनिक रूप से मजाक बनाते हैं, तो ये आपसी सम्मान को कम कर सकता है। इससे दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है और विश्वास टूट सकता है। आत्मविश्वास को हानि किसी के रूप संवेदनशील रूप वृद्धि या अन्य संवेदनशील पहलुओं पर बार बार मजाक किया जाता है, तो वो व्यक्ति खुद को अवमूल्यित महसूस कर सकता है। समय के साथ ये आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। रिश्तों में नकारात्मकता। पारिवारिक या सार्वजनिक रूप से मजाक के जरिए नाराजगी या आलोचना व्यक्त करने से अवमानना को सामान्य किया जा सकता है। यदि समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें मजाक के रूप में टालने की आदत बन जाए, तो इससे रिश्ते में नकारात्मकता बढ़ सकती है। भावनात्मक दूरी बढ़ती है। हालांकि शुरू में मजाक हल्का व मजेदार लगता है, लेकिन ये समय के साथ भावनात्मक दूरी बढ़ा सकता है। जब एक साथी महसूस करता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो दूर हो सकता है। बात निजी नहीं रह जाती। मजाक बिना संदर्भ के किया जाए तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि रिश्ते में समस्या है, जिससे गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है। मन में डर बैठ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अगली बार जीवन साथी के साथ कहीं न जाए, क्योंकि उसे वो डर होगा कि कहीं वो मजाक का कारण न बन जाए। ये डर घर में दूरियां बढ़ाता है। ये पता ना हो कि जीवन साथी किस बात से मजाक बना देगा या देगी, तो आपस में दूरियां बढ़ना स्वाभाविक है। समझदारी और समाधान जरूरी है। कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे हाथ की उंगलियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी है कि कोई आए और इसे खाली जगह को अपने हाथ और अपने साथ से भर सके। जीवन में साथ निभाने वालों से यात्रा आनंददायक होने के साथ सम्मानजनक भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते का सम्मान करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि समय रहते समाधान कर लिया जाए, क्योंकि बाद में फिर सूखे पेड़ को पानी देकर उसके हरे भरे होने की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए दोनों नियम तय करें। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलेंगे और ना ही ऐसी कोई बात करेंगे जिससे एक दूसरे की छवि पर असर पड़े। अगर किसी बात पर नाराजगी है, तो उसे घर तक सीमित रखेंगे।

0: दूसरों के सामने नहीं लाएंगे। परिवार विशेषकर बच्चों के सामने हम एक दूसरे की कमियों या गलतियों पर चर्चा नहीं करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे। किसी भी समस्या या कमी पर हम अकेले में बात करेंगे और सार्वजनिक आयोजनों में एक दूसरे की अच्छाइयों की सराहना करेंगे। कोई बाहरी यदि किसी का मजाक बनाए तो दूसरा उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा। रिश्ते ये सिर्फ बोलने से नहीं बनते, ये महसूस करने से बनते हैं, समझने से, सुनने से और सबसे ज्यादा इज्जत देने से। कभी कभी हम हंसी हंसी में कुछ कह जाते हैं जो दूसरों के दिल पर निशान बन जाते हैं और रिश्ता छुपके से एक कदम पीछे हट जाता है। तो आज बस इतना ही कहना है, हंसी जरूर बांटिए पर किसी के ऊपर नहीं, किसी के साथ हंसिए। कहना आसान है लेकिन समझाना और निभाना वही असली रिश्तों की अहमियत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, आप सुन रहे थे एक जज्बाती पहलू, रिश्ता कमजोर करता है मजाक उड़ाना। फिर मिलेंगे एक नए जज्बात नए पहलू के साथ एक नए पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने रिश्तों का भी। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: Deutsche Bozan, 90.0 Radio Vitasta, Ham Safar Zindagi Hund.
2: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Ham Safar Zindagi का, आपकी जिंदगी की रवानी। लल्लेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
3: आज का जो ललवाक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे को जीवन को जीने की कला के बारे में बताता है। कश्मीरी में ये ललवाक ललदेत कहती है, खन खन करान कुन्नो वातक, खन खन करान कुन्नो वातक, नखन गसक अहंकारी, सुमय खे माल्य सुमय आसक, स्वमिख्यन मुसर नहीं बरंदेरी। मतलब ललदेत कहती है कि हम जीवन में या तो भोग विलास में इंडल्ज हो जाते हैं या हम त्याग, यानी जीवन की डाइकोटमी है, या तो एकदम जीवन में भोग, कंज्यूमरिज्म, उपभोगता, स्वार्थ इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, या एकदम ऑपोजिट हम जीवन में त्याग, संयम, तप, उपवास या दान इस और इंडल्ज हो जाते हैं। मतलब जीवन की एक डाइकोटमी है, या तो आप एक तरफ हैं या एक तरफ हैं। परंतु भोग की तरफ जब व्यक्ति जाता है तो भोग की तरफ जाते जाते उसे कितना भी वो जीवन में पाले वो अतृप्तता हमेशा रहती है, वो डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है। आप एक चीज ले लो तो आपको दूसरी चीज की कामना हो जाती है, आपको दो चीजें मिल जाएं तो आपको चार चीजों की कामना हो जाती है। यानी लाइफ का जो पूरा वर्तुल है, वो जो सर्कल है, वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कमी हमेशा जीवन में खलती रहती है। आप जिंदगी के टॉप मुकाम पे भी पहुंच जाएं तब भी आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी महसूस होती रहेगी। यानी जितना पाओ उतना ही और चाहो, यानी पाओ कभी आपको चाहत खत्म नहीं करता। और दूसरी तरफ जब हम त्याग का जीवन अपनाते हैं, जब हम सैक्रिफाइस का जीवन, जब संयम का जीवन अपनाते एकदम ऑपोजिट तप का जीवन अपनाते हैं, उपवास का जीवन अपनाते हैं और साथ ही में हम लोग दान का जीवन अपनाते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन लाता है, हमें अहंकार भर देता है। एक तरफ से भोग हमारे जीवन में लालसा और लोभ भर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वाला जीवन हमारे जीवन में अहंकार भर देता है। हम इस बात के अहंकारी हो जाते हैं कि हम कुछ दान कर रहे हैं, हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। तो दोनों चीजों के बारे में लद्दत कहती है कि दोनों चीजें सही रास्ते नहीं है। वो कहती है समय के मारे समय आसक, यानी समय मतलब बैलेंस के साथ जीवन में रह, यानी न ज्यादा खा न ज्यादा त्याग कर। यानी हमारे यहाँ पे एक शब्द है वॉलंटरी पॉवर्टी, यानी उतना ही लो। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत नहीं है, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है। होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द लल्लित इस्तेमाल करती है, समय खेमाले समय आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस यानी बैलेंस। यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है और वही ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है, तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख देती है। और यही लल्लित का एक बहुत ही बहुमूल्य वाक्य।

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

परिस्थिति में वक्त गुजरता जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते। रिश्तों को जताती, मेरे जज्बात को अपनी पनाह में महफूज रखते, अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल करते। मैं जानता हूं मैंने बे इंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमां में तैरते बादल हमेशा से देते।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबां थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम

वो था पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही

एक आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद, मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपुरी, लेके आया हूं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, जहां बात करेंगे दोस्ती की, समर्पण की। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों को साझा करना। दोस्त वो है, एकदम वो भी ऐसे ही होता है जैसे हम हैं, और हमें बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चे दोस्त हमारे अनमोल रत्न होते हैं जो हमारे जीवन को चमकाते हैं। एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ रहता है, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किलें आएं।

दोस्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। जब दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब भी जिंदगी में सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है तो हमारे अनमोल दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और अपने अनुभव साझा कर एक यादगार बनाते हैं जिसको हम जीवन भर संजो के रखते हैं।

ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका दोस्त ना हो, जो दोस्त की अहमियत ना जानता हो। हमारी जिंदगी में ज्यादा दोस्त ना हो पर कम से कम एक दोस्त जरूर होता है, और उनके साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता। खासकर बचपन की दोस्ती तो बहुत गहरी होती है, जिनकी यादें सदा के लिए मन में बस जाती हैं।

ऐसा नहीं कि मित्रता बनावटी नहीं होती, पर जहां बनावटी मित्रता की जाती है वो स्वार्थ से भरी होती है। कोई भी संकट आए तो सच्चा मित्र ही उस मुश्किल घड़ी में साथ देता है, सारे कष्टों को दूर करता है। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अपने एक सुंदर दोहे में कहा है, आगे के मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित आहे गति संभाई, उस कुमित्र परिहे रहनी बलाई। अर्थात जो आपके सामने मीठा मीठा बोलता है और मन में बुराई रखता है, आपका बुरा चाहता है, तथा जिसका मन सांप के चाल सम्मान टेढ़ा है, ऐसे मित्रों को छोड़ देने में ही भलाई है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 भारत सोपुरी के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, आइए इस चर्चा के साथ करते हैं समापन इस कार्यक्रम का। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है और मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। मित्र सबके लिए निसंदेह रूप से एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाला प्रदान करता है। एक सच्चे दोस्त होने से बेहतर कुछ भी नहीं, जिसके साथ आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और कभी भी जरूरत होने पर उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को अर्थ देता है और हमारी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना देता है। इसी अच्छे विचार के साथ करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। आप अपना फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जल्द और किसी प्रोग्राम में भेंट करेंगे, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2। एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो गुतस्ता की पेशकश।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: पेश है कार्यक्रम नारी एक दर्पण, एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती स्नेहलता जी, प्रस्तुत करेंगे आरजे सिजल।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सभी का स्वागत है नारी एक दर्पण अंक 4 में आरजे सेजल के साथ। और आज के इस दर्पण में हम देखने की कोशिश करेंगे समाज के कुछ और पहलुओं को नारी के संदर्भ में, हमारी आज की मेहमान स्नेहलता जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्नेहलता जी। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपना तारुफ खुद ही दें, ताकि वह भी आपसे अच्छे से परिचित हो जाएं।
3: नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहलता, मैं एज अ वर्किंग वुमेन काम करती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है MBBS।
0: जी, और स्नेहलता जी, कोई भी आगे सवाल करने से पहले ये चीज पूछना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण में नारी सशक्तिकरण को आप कैसे डिफाइन करती हैं या कैसे देखती हैं?
3: नारी का आज के समय में सशक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमारे बच्चे भी हैं, अगर हम सशक्त होंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे, उनका अच्छे से गाइडेंस कर पाएंगे, जिसके कारण वो आगे अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे।
0: जी बिल्कुल। साथ ही आप एक वर्किंग वुमेन हैं, और आज के इस मॉडर्न समय में आपको लगता है कि एज अ वर्किंग वुमेन कभी कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आज के समय में भी?
3: वर्किंग वुमेन को थोड़े से इश्यूज आते हैं
0: जी,
3: ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इश्यू आते हैं, और ये भी नहीं है कि आते ही नहीं
0: जी।
3: वर्किंग वुमेन को घर और बाहर दोनों संभालने के लिए टाइम की भी जरूरत पड़ती है और सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है।
0: जी बिल्कुल।
3: जब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है तभी वो बाहर जाके वर्किंग कर सकती है।
0: और कहीं ना कहीं इसमें जो बच्चे होते हैं उनका साथ भी लगता है कि जरूरी होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग,
3: बच्चों की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं और यही कि हमारे बच्चे पीछे से अपना काम अच्छे से करें, तो और फैमिली और बच्चों दोनों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी
0: है। और साथ ही एक वुमेन आजकल इंडिपेंडेंट हो रही है, सब्जेक्ट भी हमारा यही है, तो आपको लगता है कि अगर वुमेन इंडिपेंडेंट होती है तो उससे कहीं ना कहीं समाज में या हमारे देश में बदलाव आ रहा है या आता है?
3: नहीं, जब नारी इंडिपेंडेंट होती है तो उससे हमारे समाज में बहुत ज्यादा बदलाव आता है।
0: जी,
3: जैसे हम अपने ही आसपास देख लेते हैं कि अगर नारी अपने में यानी सशक्त है तो उसको बाहर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और वर्किंग में वो जाती हैं और घर में भी उनको सपोर्ट मिलता है। और ये नहीं है कि अगर आप वर्किंग हैं या वर्किंग नहीं है, आपका दोनों ही सूरत में सशक्त होना जरूरी है कि आप अपने घर को अच्छे से हैंडल कर पाए।
0: जी बिल्कुल। और जैसे मैन वुमेन आज के टाइम पर दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों के सरवाइव करने के लिए अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रगल दोनों कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में वो इक्वल है या कहीं ना कहीं दोनों की जर्नी अलग है?
3: इक्वल है, क्योंकि पहले के समय में ऐसा था कि सिर्फ मेल काम करता था
0: जी,
3: और वुमेन सिर्फ अपना घर चलाती थी, घर को देखती थी। लेकिन अब समय और परिस्थिति बदल रही है, अब मैन और वुमेन दोनों ही वर्किंग में जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों के स्ट्रगल काफी हद तक सेम सेम होते जा रहे हैं।
0: जी
3: ठीक है,
0: ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे समाज में ये धारणा भी थी पहले कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है वुमेन को काम नहीं करना चाहिए, और अगर औरत जो है बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। और आज के समय में पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है और कई एक्ट्रेसेस भी सामने आई हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी में काम किया है, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद भी काम किया है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि बतौर समाज का एक हिस्सा और एक औरत के तौर पर आप इसके बारे में क्या सोचती हैं?
3: एज अ वुमेन मैं ये सोचती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें वर्किंग करनी चाहिए
0: जी।
3: इससे एक तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी क्योंकि हम वर्किंग में रहेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरा हमारा मेंटली स्ट्रेस कम होगा क्योंकि जब पर्सन घर पे रहता है तो वो सिर्फ घर के बारे में ही सोचता है और घर की टेंशन्स ही आती हैं उसके दिमाग
0: जी।
3: लेकिन जब पर्सन बाहर निकल जाता है तो दो बंदों से मिलेगा तो अच्छी बातें भी सुनेगा और बुरी बातें भी सुनेगा, ठीक है
0: जी।
3: तो वो अपने स्ट्रेस को भूल जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है बाहर के एनवायरनमेंट को देख के। इसलिए वुमेन को प्रेगनेंसी में वर्क करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो
0: जी।
3: लेकिन स्ट्रेस लेने के लिए काम नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं मुझे काम करना है और मैं स्ट्रेस लेके काम कर रही
0: हूँ,
3: वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक है, आप इजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्क करना चाहिए डेफिनेटली।
0: और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर हम बाहर जाते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है?
3: बिल्कुल होती है। नई लोगों से मिलके आपको अच्छा फील होता है क्योंकि एज अ वुमेन अगर आप घर घर में रहती हैं तो घर का एनवायरनमेंट आपके लिए ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपको क्या कह सकते हैं कि गुस्सा भी आता है किसी किसी बात, लेकिन आप वो निकाल नहीं पाते गुस्सा, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर आप वर्किंग में हैं तो आप बाहर जाएंगे, किसी से बात करेंगे, घर की टेंशन आप घर में ही छोड़ के जाते हैं और वर्किंग की टेंशन आप वर्किंग
0: में लेते हैं जी। और हमेशा ये कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आज के समय में स्त्रियां भी काम कर रही हैं, तो पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में या जो फीमेल्स वर्किंग हैं उनके जीवन में मेल का कितना रोल रहता है या कितने प्रतिशत पुरुष हैं जो उनका साथ देने में आगे आते हैं, और क्या अब ये कहावत दोनों के लिए कॉमन कर देनी चाहिए?
3: बिल्कुल, ये कहावत दोनों के लिए कॉमन कर देनी चाहिए क्योंकि अगर किसी भी मेल के पीछे फीमेल का हाथ है तो फीमेल के पीछे भी उसकी फैमिली का हाथ है
0: जी।
3: उसको हम यानी ये कह सकते हैं कि हाँ उसकी फैमिली सपोर्ट करती है, उसका हस्बैंड या उसके ब्रदर सिस्टर या फादर उसको सपोर्ट करते हैं तभी वो आगे सक्सेस होता है
0: जी। और एक चीज काफी समय से दिखाई जाती है, जैसे अगर हम अपने सिनेमा की ही बात करें तो सिनेमा में काफी जो पुरानी फिल्में थी उनमें भी दिखाया जाता था कि कहीं ना कहीं औरत की सफलता में एक औरत ही बाधा होती है, और ये चीज जो है आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदल चुकी है या है या नहीं है। आपने कभी इस चीज को महसूस किया है?
3: बिल्कुल, आज के समय में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। वो पहले का दौर था कि औरत औरत की दुश्मन थी, आजकल आप अपने फैमिली में देखेंगे तो आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट ही करते हैं
0: जी। बिल्कुल,
3: 90% ऐसा होगा कि आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं, 10% में भी ऐसा हो सकता है कि सपोर्ट नहीं करते। तो औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, ये सिर्फ यानी पर्सन की अपनी
0: वहम कह सकते हैं,
3: उनकी अपनी सोच कह सकते
0: जी। और एक और चीज पूछना चाहूंगी, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है एक मूवी का कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है इस डायलॉग पर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी इस डायलॉग के ऊपर भी और इस डायलॉग का जो पर्सपेक्टिव है उस बारे में भी?
3: ये कह सकते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये फिल्मी डायलॉग है
0: जी,
3: लेकिन रियल लाइफ में मर्द को भी दर्द होता है
0: जी,
3: ठीक है। क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो दर्द सभी को होता है, एज अ ह्यूमन सभी बंदों को दर्द होता है। उसमें ये क्रिटिसाइजेशन आप नहीं कर सकते कि नहीं मेल है या फीमेल है उसको दर्द हो गया या नहीं, लेकिन ये भी जरूरी है कि मेल अपना दर्द शो नहीं करता, वो दुनिया के सामने अपने दर्द को दिखाते नहीं, लेकिन मम्मी को दर्द तो सभी को।
0: बिल्कुल, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस व्यक्त करना, अपने भावों को जताना जरूरी है?
3: बिल्कुल, अपने भावों को जताना जरूरी है। जब तक आप अपने इमोशंस को दूसरे के आगे दिखाएंगे नहीं, दूसरे पर्सन को पता कैसे चलेगा?
0: जी बिल्कुल, अभी और भी बातें जारी रहेंगी इसी तरह, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़े गीत की भी यहाँ पर जरूरत है, थोड़े म्यूजिक की भी जरूरत है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कौन सा पसंदीदा गीत है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी?
3: एक सॉन्ग है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नारी एक दर्पण में। उम्मीद करती हूँ जो अभी आपने गीत सुना होगा आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो अब वापस चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और स्नेहलता जी से और भी सारी बातें करते हैं। अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मी टाइम और सेल्फ लव की। स्नेहलता जी, हमारी जनरेशन का ये कहना है कि मी टाइम यानी कि खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आप एक वर्किंग वुमेन हैं और साथ ही घर भी संभालती हैं, तो क्या आप अपने लिए समय निकाल पाती हैं और क्या अपने लिए समय निकालना जरूरी समझती हैं?
1: अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते। लेकिन एज अ वुमेन मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास में अपने खुद के लिए समय नहीं होता, मेरे पास में बाकी सब चीजों के लिए समय है। अगर मुझे यानी अपने काम करने हैं बिल्कुल टाइम टाइम सारे काम होंगे बच्चों के, पेरेंट्स के या फैमिली के, किसी भी काम में मैं लापरवाही नहीं करती। लेकिन जहाँ अपनी बात आती है तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं है थोड़ी देर में कर लेंगे।
0: तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपको मौका मिले अपने लिए टाइम निकालने का, अपने लिए कुछ करने का, तो वो क्या चीजें होंगी जो आप करना चाहेंगी?
1: अगर मुझे अपने लिए समय निकालने का टाइम मिले तो मैं पेंटिंग करना चाहूंगी।
0: जी, तो आपको पेंटिंग का शौक है हमेशा से?
1: हाँ, तो कॉलेज टाइम में हम करते थे लेकिन अब नहीं करते, अब टाइम नहीं है अपने लिए। कॉलेज टाइम में वही बात है, सेल्फ लव।
0: हाँ जी,
1: उस टाइमिंग में हमारा सेल्फ लव था जब हम अपने आप से प्यार करते थे, हमारे पास में समय भी होता था। क्योंकि फैमिली में ठीक है, घर वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा हैं, ब्रदर्स, लेकिन हम अपने बारे में सोचते थे
0: जी।
1: लेकिन आफ्टर मैरिज पर्सन अपने बारे में नहीं सोचते, यानी बच्चे वगैरह, फैमिली, हस्बैंड, माता, सारी चीजों में ऐसे फंस जाता है कि वो उनके बारे में ही सोचता है, अपने बारे में सोचने का उसको समय ही नहीं।
0: तो अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं फीमेल्स एक एज के बाद अपनी बॉडी इमेज को लेकर, खासतौर पर आफ्टर प्रेगनेंसी एक इशू आ जाता है, कहीं ना कहीं बॉडी हमारी चेंज होती है उस दौर के बाद, तो कॉन्शियस हो जाती है अपनी बॉडी को लेकर। अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कहें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से सोचे, अगर हम सोचे कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम हमारा काफी गिरता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रखेंगे?
1: आप जब किसी भी बच्चे को नया जन्म देती हैं, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, उस टाइमिंग में आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि आपका बेबी ठीक ठाक इस दुनिया में आ
0: जाए।
1: लेकिन जब बेबी आने के बाद में आपको जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी नहीं करना आएगा, बच्चों को संभालना तक नहीं आएगा कि उसको कैरी कैसे करना है। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आप बच्चे को टच करने के बारे में सोचोगे तो भी आपके हाथ टच करूं या ना करूं, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट सा होता है कि कहीं हमने जोर से नहीं पकड़ लिया तो
0: उसको कुछ ना हो जाए। हाँ।
1: लेकिन जहाँ फिर अपनी बात आती है, प्रेगनेंसी के बाद में आपका बेबी हो गया, उसके बाद में जब आप अपने खुद के बॉडी को देखते हो या खुद के बारे में सोचते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी अपने बारे में सोचना, फिर वो अपने हेल्थ के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है।

0: क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी के बाद में, प्रेगनेंसी के टाइमिंग में बिल्कुल चेंज हो जाता है, वेट भी आप गेन करोगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो आप प्रेगनेंसी के बाद में जल्दी से लूज नहीं कर पाते। उसको लूज करने के लिए आप अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगते
1: जी
0: हैं, ठीक है। और इतने टाइम तक आप अगर वेट करना चाहोगे कि 2 साल जब तक आपका बच्चा फीड कर रहा है, तब तक आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं है, बहुत लिटिल रिटर्न है। फीडिंग छुड़वाने के बाद में फिर आप अपनी एक्सरसाइज के बारे में या अपनी डाइट के बारे में सोच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और मुझे लगता है इस दौरान जैसे कई फीमेल स्ट्रेस ले लेती हैं अपनी बॉडी को लेकर, वो भी हमें कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहिए
0: नहीं
1: ना।
0: लेना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे थे ना, मदर होना एक अलग ही फीलिंग होती है,
1: जी बिल्कुल।
0: तो उस शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते, उस फीलिंग को।
1: और आज के समय में हम ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो हैं फीमेल हर एक फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, लेकिन अभी ऐसी भी जगहें हैं या कह लीजिए कोर्सेज हैं जहाँ पे विमेन परसेंटेज बहुत ही कम है। जैसे हम मैकेनिकल कोर्स में भी दे सकते हैं कि लड़कियां काफी कम जाती हैं उस तरफ, या जब बात आती है कि एक लड़की के आउट ऑफ सिटी जाकर काम करने की या हायर पोजीशन पे जाकर काम करने की या इक्वल पे की, तो वो अपॉर्चुनिटी उन्हें बहुत ही कम मिलती है या बहुत ही कम देखने को मिलता है कि उस पोजीशन पर वो ज्यादा समय तक रह पाए। तो एज अ वुमेन और एक पेरेंट के तौर पर भी आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
0: मैं इस बारे में यही कहूंगी, एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये आपका बच्चा बेटा है
1: जी
0: और ये बेटी है। आपको दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए एज अ फीमेल, कि मेरी बेटी है तो मैं उसको बाहर कहीं जॉब पे ना भेजूं या उसको ऐसे फील्ड में एडमिशन ना दिलाऊं जहाँ पे आगे उसको जाके अलग से रहना, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि अगर अभी हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे आपने मैकेनिकल का कहा,
1: जी
0: मेरी बेटी बीटेक करना चाहती है,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँ कि नहीं बीटेक नहीं करनी क्योंकि बीटेक के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको बाहर नहीं भेज, तो ये मेरा विचार गलत होगा अपनी बेटी के लिए। क्योंकि एक तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं
1: हाँ जी
0: कि मेल फीमेल दोनों इक्वल है, वो समय अलग था जब आप इक्वल नहीं थे, हमारे मम्मी पापा या उनके मम्मी पापा, उस टाइमिंग में होता था कि हाँ, लेकिन हमारे जेनरेशन में हमारे पेरेंट्स ने हमें इक्वलिटी का पाठ पढ़ाया, जितनी एजुकेशन हमारे ब्रदर सिस्टर्स को मिली है उतनी ही हमें मिली, तो भाई बहन में अंतर उन्होंने नहीं किया तो हम अंतर करने वाले कौन थे।
1: जी बिल्कुल।
0: इसीलिए बेटा हो या बेटी, दोनों को फ्री कर दो, इक्वल उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, संस्कार दोनों में सेम होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बेटा है तो वो बाहर जाके मिसबिहेव करे किसी भी फीमेल से,
1: जी
0: ये चीज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती। ठीक है, बेटी है बेटा है, लेकिन संस्कार दोनों में सेम हो, आप दो सेम चीजें हैं बेटा, किसी को गलत नहीं बोलना। तो वही चीज हम बेटी को सिखाते हैं कि किसी को गलत
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये पूछना चाहूंगी, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर एक विमेन को या वर्किंग जो एम्प्लॉय है वहाँ पे फीमेल, उनके लिए अगर कुछ बदलाव आए आने वाले समय में, तो आपके हिसाब से वो क्या बदलाव होने चाहिए?
0: एज अ वुमेन, मैं ये चाहूंगी कि जो वर्किंग प्लेसेस हैं हमारे, वहां पे आपको एज अ फीमेल थोड़ी सी फैसिलिटी और दी जानी चाहिए,
1: जी
0: कि आप स्ट्रेस महसूस कर रही हैं प्रेगनेंसी वगैरह अगर आपकी है तो आपको रिलैक्सेशन करने के लिए थोड़ा सा अलग से कॉर्नर होना चाहिए
1: जी
0: कि आप वहां पे जाके रिलैक्स कर सके, या आपका बच्चा पे अकेला नहीं रह सकता, आपको उसको फीड भी करवाना है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको, वैसे तो गवर्नमेंट देती है आपको
1: जी
0: 1 आवर का टाइमिंग देती है, कि अगर आपके स्टार्टिंग में भी 1 ईयर का टाइमिंग है कि आप 1 ईयर प्रेग्नेंट हैं, यानी बेबी को डिलीवर किया है, तो 1 ईयर तक आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं फीड करवाने के लिए,
1: जी
0: ठीक है। तो ये आगे और भी टाइमिंग शायद बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की केयर मम्मी से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। और ये बात सभी जानते हैं कि जब तक बच्चा फीड करता है उसको मदर का फीड ही करवाना चाहिए, 6 महीने तक तो डेफिनेटली।
1: जी जी।
0: उसके बाद में भी ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, आप उसकी फीडिंग छोड़वा दें। अगर आप 2.5 से 3 साल तक फीडिंग करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और आपकी बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा।
1: जी, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो मदर की फीडिंग होती है बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छी रहती है। और साथ ही गवर्नमेंट भी ऐसे प्रयास कर रही है, काफी सारी स्कीम्स लेकर आ रही हैं विमेन के लिए, ताकि हर एक फील्ड में वो कंफर्टेबली काम कर सके और विमेन का परसेंटेज जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में है वो ज्यादा रहे।
0: बिल्कुल, अभी मे बी रोहतक साइड में अलग से एक कैबिन बनाया गया है, एक बिल्डिंग बनाई गई है कि मदर वहां पे जाके अपने बच्चे को कंफर्टेबल होके फीड करवा सकती है।
1: जी,
0: क्योंकि जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जो वर्किंग वुमेन है या कहीं पे भी हम ट्रेवल करते हैं तो हम अपने बच्चे को साथ में कैरी करते हैं, लेके जा रहे हैं, तो हमें वो स्पेस नहीं मिलता,
1: एक कंफर्ट चाहिए,
0: कंफर्ट जोन हमें मिल ही नहीं पाता। तो अब ये सरकार सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी बिल्कुल, अब और बातें भी करेंगे लेकिन अब वक्त है एक और गीत का। अब इस समय आप कौन सा गीत अपना पसंदीदा सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
0: आपने सुना होगा रात अकेली है,
1: जी
0: बुझ गए दिए।
1: जी जी जी, ये भी लाइक गुनगुना सकती है, दो लाइट अगर हो जाए इस गीत की तो।
0: रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास,

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी एक दर्पण आरजे सेजल के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। समाज और नारी से जुड़े काफी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। अब इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इसके अंत की ओर। काफी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे कि सेल्फ लव, विमेन स्ट्रगल और सोसाइटल मिथ्स के बारे में भी। अब थोड़ा मोटिवेशन की ओर बढ़ते हैं। स्नेहलता जी, हमारी जिंदगी में काफी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें डाउनफॉल, फेलियर, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। आपने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में इन चीजों को महसूस जरूर किया होगा। तब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए और मोटिवेशन के लिए क्या किया, जिसे सुन जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं या महिलाएं आपको सुन रही हैं, वह भी अपने आप को मोटिवेट रख सके।
1: ये फेस सभी की लाइफ में आता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है
0: जी।
1: जो आप कभी बचपन में करते थे
0: ये
1: जरूरी नहीं कि बहुत इफेक्टिव हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें। अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलें, आपको मूवी देखना पसंद है या सॉन्ग सुनना पसंद है तो वो कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा असरदार है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। मैं जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं अपने बच्चों के साथ में बैडमिंटन खेलती हूँ
0: जी,
1: या फिर वो खेलते हैं पकड़म पकड़ाई, दूसरे को पकड़ते हैं। तो बच्चों के साथ में खेलना भी बहुत अच्छा है कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए
0: जी। बिल्कुल। और आज के समय में ऐसा कौन सा बदलाव है जो आप एक फीमेल में चाहेंगी या फीमेल को अपने अंदर लेकर आना चाहिए?
1: फीमेल को अपने अंदर बदलाव ये लेके आना चाहिए कि उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए
0: जी।
1: कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सभी में। ये जरूरी नहीं है कि वर्किंग वाले ही कॉन्फिडेंट हो, सभी लेडीज में, औरतों में, महिलाओं में आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना चाहिए
0: जी। मुझे लगता है जहाँ तक जो होम मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं घर में रहकर एक उसी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाती हैं।
1: बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती है,
0: तो बाहर जाकर कहीं ना कहीं उन्हें कभी कभी दिक्कत महसूस होती है इन सब चीजों में।
1: बहुत बार ऐसे पर्सन को देखते हैं जो घर में बहुत अच्छे से हाउस मेकिंग करती हैं, लेकिन जब वो पब्लिक में हमारे पास में आती हैं तो वो अपने क्वेश्चंस इजीली बोल नहीं पाती कि वो चाहती क्या है। तो उनको अपनी बात रखने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: तो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज करने की जरूरत है?
1: अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: क्योंकि जी,
1: अगर महिला घर में काम करती है, हाउसवाइफ है, तो उसकी फैमिली को उसको बाहर भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि काफी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि नहीं डियर, तुझे मैं कैसे बाहर लेके जाऊं, तू वर्किंग में नहीं है, मैं तुझे अपने साथ में फील्ड में लेके, यानी अपने फ्रेंड सर्कल में लेके जाऊंगा तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने वाइफ को या अपने माता पिता को या किसी को भी बाहर लेके जाते हैं तो उनको कंफर्टेबल फील करवाएं, तभी उनमें कॉन्फिडेंस आएगा
0: जी। बिल्कुल।
1: ये जरूरी नहीं है कि उनका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है या वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। आप उनकी लैंग्वेज में ही उनसे बात करें तो वो कॉन्फिडेंस फील करें।
0: और अगर बदलाव की ही बात करें, इसे आगे बढ़ाएं, तो एक शब्द है फेमिनिज्म, और जो इक्वालिटी की बात ही करता है लगभग, और इस शब्द को इक्वालिटी से ही जोड़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस शब्द की, फेमिनिज्म शब्द की अभी हमें जरूरत है, और इसके मतलब को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं?
1: इक्वालिटी आप ये कह सकते हैं मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं
0: जी,
1: लेकिन कहीं ना कहीं आज की दुनिया में भी ये विचार है किसी किसी पर्सन के दिमाग में कि नहीं, ये फीमेल है, ये वो चीज नहीं कर सकती। तो वो चीज गलत है। वुमेन सारी चीजें कर सकती है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, और बातें और भी हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन वक्त हमारे पास सीमित है, तो इसी को यहीं पर हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं इस कार्यक्रम को। और आज 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से आप समाज को और हमारे श्रोताओं को, साथ ही खास तौर पर जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं फीमेल को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास करें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं रखेंगी कि हाँ हम ये कर सकते, तो आपकी लाइफ इजी रहेगी। अपने अंदर बिलीव कीजिए।
0: जी बिल्कुल। और अब एक आखिरी सवाल कि आज की वार्ता करके 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो दस्ता में आकर आपको कैसा लगा?
1: आज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आके नर्वस थी, लेकिन आपके साथ में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
0: और अब एक आखिरी गीत की ओर चलते हैं। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और एक और हम गाना सुनना चाहेंगे, एक आखिरी गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
1: सॉन्ग है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: ओके, अब मुझे दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में जल्द ही। अगर आप किसी भी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर दे सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहें 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो बुतस्ता, और छोड़े जा रही हूँ आपको एक गीत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
1: धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
2: झुमका गिरा रे हाय झुमका गिरा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान थे श्रीमती स्नेहलता जी, जिनके साथ बातचीत कर रहे थे आरजे सेजल। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखा।

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान ली।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
1: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवित।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: सार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बड़के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटखट रंगीले सावरिया आंखें सी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: गुजरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

अरे तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: dala झमेल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। ये सामुदायिक रेडियो आप सुनते हैं जिसका प्रसारण होता है अम्बाला छावनी से, और इसकी स्वीकृति मिली है भारत सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। हम बात करते हैं अम्बाला की, और हम चाहते हैं कि अम्बाला को विश्व पटल पर रखा जाए। ये जो मीडियम है, ये जो पटल है, ये सभी अम्बाला वासियों के लिए है। और क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं अम्बाला की, और हम चाहते हैं कि अम्बाला की कोई भी जानकारी हो जो हमें आप तक पहुँचाना चाहिए, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश हमेशा करते हैं। मैं भारत सोपोरी, आपका रेडियो दोस्त, और इस समय मैं लाइव हूँ आपके साथ। और आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, उनसे करेंगे बात, देखते हैं वो अम्बाला के बारे में क्या जानते हैं, अम्बाला के लिए वो क्या करना चाहते हैं। और कोशिश यही है कि जितने भी लोग अम्बाला में है, ये जो पटल है, उन सब के लिए है। जो भी हमारे पास कोई आता है, हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़, उनकी बात, उनकी दिल की बात आप सभी तक पहुंचाएं। और कोशिश ये है कि हम सब मिलके अम्बाला की उन्नति में हाथ बढ़ाएं, चाहे कोई भी जरिया हो। हम हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी जो बात है वो रखने की कोशिश करते हैं, और साथ में अम्बाला के लिए वो सब मिलके काम करते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे पास एक बहुत ही हमारे परिवार के साथ जुड़ी एक महिला है, जो सशक्त महिला है। मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूंगा, और साथ में जानेंगे उनसे ही उनका परिचय। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे आज के इस लाइव सेशन में।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आदाब।
0: मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका परिचय, और ताकि हमारे सुनने वाले जो है वो जाने कि वो किन से रूबरू है।
1: मैं महराज बानो, PGT फिजिकल एजुकेशन, जो कि शहजादपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनाना में कार्यरत है।
0: तो आप अम्बाला को रिप्रेजेंट उन बच्चों के लिए भी करते हैं जो, जिनका फ्यूचर आप बनाती हैं। और क्योंकि बच्चे हमारे देश के एक ऐसा हिस्सा होते हैं, हमारे देश की शक्ति होती है, और आप उनको सही दिशा में डालते हैं ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़े, वो कोई अपने जिंदगी का जो रास्ता है वो अपनी दिलचस्पी के साथ चुने और उनको आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा और हमारे सारे श्रोता जानना चाहेंगे, और आप किस दिशा में अम्बाला को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं?
1: जी भारत, ऐसा है, हमारी बहुत इच्छा थी कि कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहां सभी लोग आएं और फायदा भी हो, ताकि आज के बदलते हुए दौर के साथ अम्बाला भी आगे उन्नति करे।
0: जी,
1: तो इसीलिए हमने सोचा कि निकलसन रोड पर हमने एक मोंटी कार्लो का भव्य शोरूम खोला।
0: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो मोंटी कार्लो का शोरूम है, और आज के जो युवा है वो खास करके ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो आमतौर पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे शोरूम है हमारे अम्बाला में। पर अगर युवाओं की बात करते हैं, तो युवा खास करके जब भी अपने परिधान वो चुनते हैं तो वो ब्रांडेड परिधान चुनते हैं। तो जब आपने ये शोरूम खोला, इस खोलने के पीछे क्या उद्देश्य था?
1: जी भारत, बिल्कुल, हमारे ये शोरूम पर यही है कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और जो कि वही बात के ब्रांड की बात आ जाती है, तो ये ब्रांड भी है और प्राइस भी नॉमिनल है।
0: जी, तो आप चाहते हैं कि अम्बाला को एक सही दिशा में आगे लेके जाया जाए। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने इस शोरूम की शुरुआत की अम्बाला में, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक कस्बा ही हम इसको कहेंगे, जब ऐसी जगह पर हम कोई नई शुरुआत करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अम्बाला के लोगों का रुझान, उनका जो आप इस शोरूम के प्रति आना और उसका इस्तेमाल करना, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो?
1: जी, ये हमने स्टोर ओपन किए हमें लगभग 6 महीने हो गए अम्बाला में।
0: जी,
1: और सबसे बड़ी बात, अम्बाला के लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा।
0: जी,
1: इवन अम्बाला सिटी तक के लोग, और भी आसपास से बहुत लोग आते हैं, जो पंजाब का लगता एरिया है वहां से भी बहुत लोग आते हैं। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए हम बल्कि ये सोच रहे हैं कि हम एक और शोरूम जल्द ही खोलें।
0: वाह, क्या बात है। तो यानी कि अंबाला हम ये कह सकते हैं कि तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और आज कल के दौर में जहां एआई का जमाना है और बच्चों को आज शोरूम या शॉप या दुकान जाने से पहले वो इंटरनेट से ही देखते हैं कि हमें किस जगह जाना है और हमें किस तरीके के परिधान या किस तरीके के कपड़े चाहिए। जब आपके पास शॉप पे कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा जेंट्स होते हैं या लेडीज सेक्शन में आते हैं या किड्स वेयर सेक्शन में आते हैं?
1: देखिए, किड्स वेयर का तो अभी कुछ थोड़ा ही है
0: जी,
1: जेंट्स और लेडीज वेयर में है, तो वो हमारा बढ़िया, लोगों की तरफ से बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हम चाहेंगे कि लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे।
0: जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी अंबाला की जो उन्नति है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएं। मैं आपसे अंत में पूछना चाहूंगा, इस लाइव के माध्यम से आप अंबाला की सभी जनता को क्या कहना चाहते हैं?
1: बस लोग बढ़िया पढ़ाई ध्यान, बच्चे जो यंग जनरेशन के लिए मैं खास तौर से कहना चाहूंगी कि क्योंकि यंग जनरेशन ही हमारी आगे जो है डोर संभालती है
0: जी।
1: तो यंग जनरेशन से यही कहना चाहूंगी कि बच्चे ध्यान से पढ़ें, मोबाइल से, मोबाइल का यूज करें पर थोड़ा करें,
0: सीमित करें,
1: ताकि हाँ थोड़ा करें, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, यही पढ़ाई आगे जाके आपको बहुत दूर लेके जाएगी। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर मोंटी कार्लो शोरूम में जाइए जो निकलसन रोड पर है। आप देखिए कि जो बात, जो आज के हमारे स्टूडियो में आमंत्रित मेहमान ने आप तक बात पहुंचाई, आप जरूर जाइए और आप जाइए देखिए वहां पर क्या आपके मतलब का कुछ है। और जैसे मैम ने कहा कि आने वाले दिनों में अंबाला की जो रिस्पांस है, अंबाला का जो रिस्पांस है उसको देखते हुए एक और शोरूम भी खुल सकता है यहाँ पे अंबाला में, ताकि हम आपकी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएं। और इसके साथ ही पहले देखते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो इजाजत लेने से के साथ साथ कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप आएंगे, आप पूरी जानकारी के साथ आएंगे और फिर हम लोग उनके साथ फिर रूबरू हो जाएं।
1: मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि सभी अंबाला वासी, हमारे अंबाला के लिए ये रेडियो वितादसा चला हुआ है और मैं ये चाहूंगी कि सभी अंबाला वासी इसको ध्यान से सुना करें और इसको सपोर्ट करें, भारत, क्योंकि इनको चलाने वाले जिनका नाम ही भारत है, तो हम उसको चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुने हमारे इसको। धन्यवाद भारत
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और मैं आपको ये कहूँ कि जो हमारा ये प्रसारण है ये रेडियो के माध्यम से 20 किलोमीटर के दायरे में सुना जाता है, पर हम साथ में इसका इंटरनेट स्ट्रीमिंग भी करते हैं जो दुनिया में सुना जाता है। अभी कल श्रोता दिवस था तो एक प्रोग्राम में हमारे एक श्रोता, उन्होंने ये बोला कि वो कुछ दिनों के लिए बच्चों के पास कैनेडा गए थे, तो कनाडा में भी उन्होंने ऑनलाइन रेडियो वितस्ता को सुना और बच्चों ने पूछा कि आप यहाँ भी रेडियो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं रेडियो के बगैर नहीं रह सकता। तो हमें बहुत खुशी होती है, जैसे आपने हमारे श्रोताओं को कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे पास आप स्टूडियो में आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप जब आए तो आप पूरी तैयारी के साथ आए।
1: जी
0: धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद जय भारत, सुनते रहिए आप हमारे प्रसारण।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
4: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां ते नाल फुटवा कराउन जो
3: रेडियो वितस्ता
5: असले पौन पटाके
4: सुन मेरे दिलदार
3: 90.0 मेगा।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान में ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला से बचाव के लिए समय पर करें निगरानी। लक्षण दिखते ही दवा का छिड़काव, संतुलित सिंचाई रखें। धान की पत्तियों पर बदरा यानी ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला जैसी बीमारियों एवं कीड़ों का आक्रमण हो सकता है। ऐसे में किसानों को सजग रहना चाहिए और समय पर खेतों का निरीक्षण कर बचाव के प्रबंध करने होंगे। HAU के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि बदरा यानी ब्लास्ट बीमारी के लक्षण नजर आते ही प्रति एकड़ 300 मिलीलीटर आइसोप्रोथिलियन 40% EC या 200 ग्राम कार्बोडाइजिम 50 WP के घोल का छिड़काव करें। पानी की मात्रा 200 लीटर रखें। दूसरे छिड़काव 50% बलियां निकालने पर करें। बलियां निकालते समय खेत में सूखा ना लगने दें। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवागुण पत्ती अंगमारी जिन खेतों में आ जाए उनमें पानी लगातार ना खड़ा रहने दें और ना ही उस खेत का पानी दूसरे खेत में जाने दें। ऐसे खेतों में नाइट्रोजन खाद बाद में डालें। खेत में खरपतवार को ना पनपने दें, छिड़काव जरूरी। धान की फसल में पानी की कमी ना होने दें। सिंचाई 5 से 6 सेंटीमीटर से अधिक गहरी ना करें। खेत में खरपतवारों को कभी ना पनपने दें। सफेद पीठ वाला वो भूरा तेला पौधे के तने के साथ लगा रहता है। 120 ग्राम पाइमोट्रोजिन 50% WUG चेस 50% WUG या 80 ग्राम डाइनोटिफ्रॉन 20 AG ओशीन 20 AG को 200 लीटर पानी से मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। रोपाई के 3 से 6 माह बाद डाले नाइट्रोजन। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि धान में यूरिया का प्रयोग फॉस्फोरस के स्तोत्र के अनुसार करें। यदि फॉस्फोरस की प्रति DAP से की गई है तो किस्म के अनुसार 42 से 110 किलोग्राम और SSP से की गई है तो 52 से 130 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया डालें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा पहले देने के बाद शेष 2 बराबर भागों में रोपाई के 3 और 6 सप्ताह बाद डालें। शीत ब्लाइट पर 15 दिन में छिड़काव करें। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि शीत ब्लाइट बीमारी से बचाव के लिए खेत और मेंढों पर दूब व अन्य घास ना उगने दें। बीमारी के लक्षण दिखते ही अनुचित फफूंदनाशी का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी करें ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। सीधी बिजाई वाली किस्मों में डालें यूरिया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र चंद्र के अनुसार सीधी बिजाई बासमती धान की लंबे कद की किस्मों के लिए 55 किलोग्राम यूरिया और छोटे कद की किस्मों के लिए 90 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की मात्रा लंबे कद की किस्मों में बुवाई के 2 एवं 7 सप्ताह बाद डालें, जबकि छोटे कद की किस्मों में 3 और 6 एवं 8 या 9 सप्ताह बाद डालें। बत्तर व सूखी अवस्था वाले खेतों में सिंचाई मौसम अनुसार सप्ताह के अंतराल में करें। जैविक खेती को बढ़ावा। वर्मी कंपोस्ट पर मिलेगी 80% सब्सिडी। सीजन में 2 बार खुलेगा पोर्टल, रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही मिलेगा लाभ। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने, इससे जुड़े किसानों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को जैविक खाद
वर्मी कंपोस्ट पर 80% सब्सिडी देने की योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बचाना है। योजना के अनुसार यह सब्सिडी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत जैविक उर्वरकों पर ही जारी की जाएगी। कृषि उप निर्देशकों के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा टिकाऊ तंत्र विकसित करना है जिसमें किसान सुरक्षित स्वस्थ और अवशेष मुक्ति कृषि उत्पादकों का उत्पादन कर सके। कृषि विभाग के महानिदेशक ने सभी जिलों के उप निर्देशकों को इन दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान जागरूक होकर इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर जैविक खेती की ओर रुख करें। ऐसे करें आवेदन। पंजीकरण अनिवार्य। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है। ऑनलाइन प्रोसेस। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के अनुसार किसान का सारा विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से संबद्ध ही ले लिया जाएगा। अनुभव की जानकारी। आवेदन करते समय किसानों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे पहले से जैविक खेती कर रहे हैं या इस क्षेत्र में नए हैं। जैविक खेती का दायरा बढ़ाना। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो और मिट्टी की सेहत सुधरे। जैविक खेती से खेत की मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाना है। कृषि अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और किसानों का खर्च घटेगा। उपभोक्ताओं तक रसायनों से मुक्त स्वस्थवर्धक कृषि उत्पाद पहुंच सकेगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होंगे आवेदन। कृषि विभाग के APPO डॉक्टर सतीश ने बताया कि जो किसान जैविक खाद पर सब्सिडी चाहते हैं उन्हें विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की है। खरीफ फसलों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक होगी। रबी फसलों के लिए आवेदन की 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जा सकती है। किसान को तय सरकारी दुकानों से प्रोडक्ट खरीदने होंगे। इसके बिल अपलोड करने के लिए सब्सिडी सीधी खाते में आएगी। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 megahertz, Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: कर न रहो, भूली भटकी हुई यादों में उलझ कर न रहो।
1: जिंदगी वक्त के धारों पे बहा करती है, आज किसकी
0: कल उसकी,
1: आज किसकी है।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَسْتا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस के अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस।

0: बोलते हैं, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है या और भी धमनियां जो है खून की जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है जो ब्लड कवरिंग है ब्लड वेसल की कवरिंग है वो फटती है और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
1: जी।
0: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स जैसे किसी को आर्थराइटिस है
1: जी,
0: क्योंकि उसे दर्द होती है वो मेडिसिन लेते रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है तो वो भी मेडिसिन की वो भी दवाई लेता रहता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं वो थोड़े दिन बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनवरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
1: क्या डॉक्टर साहब जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
0: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है
1: जी।
0: जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4-6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे अ वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
1: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: सो

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्ही मीनारों को देख कर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला गेट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
3: पेशा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2 प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
4: फिल्मी गीतों पर आधारित पेश है प्रोग्राम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी कसम फिल्म के गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चलते चलते से। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना जो वापस फिल्म का है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

सभी श्रोताओं के लिए पेश है फिल्म शर्मिली का गाना, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है SD वर्मन ने और स्वर दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा।

इस कार्यक्रम का अगला गीत है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

अब आपकी नजर है जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत से सजाया है जयदेव ने। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत और आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत की, जो फिल्म त्रिशूल का है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है खयाम ने।

अब पेश है फिल्म ताजमहल का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसे लिखा है साहिर रिजवानी ने, और संगीत रोशन का है।

इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। संगीतकार आरडी बर्मन, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं उसका फीडबैक हमें जरूर रेडियो वितस्ता के इस नंबर पर दीजिए। नंबर है 7056413010। सरगम कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

दोस्तों खुश आमदीद, मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। इस सफर में आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मुझे पूरा

शायद समय की रफ्तार थम चुकी है। तुम्हारे लौटने के इंतजार का ये कैसा आलम, हवाओं की तरह आते हो चले जाते हो इस वादे के साथ कि फिर लौट आऊंगी। हमारी सितम जरीफी देखिए, तुम्हारी आहटों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर छूने का तस्वुर ज़हनो दिल से कौंसों दूर। बेशक रुत बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की खुमारी हमारी चाहतों को ना बदल सके। बख्श के ख्यालों को रौनक, राहों को कर गए मुनव्वर। मेहरबानी

जाने क्यों इन उदासी भरे लम्हों में एक कसक सी उठती है दिल में कि इन खामोश पुरसकून पर जज्बाती रातों में कोई आता है जरूर और पैरों को छूकर दबे पांव निकलता है यूं ही मुस्कुराकर और मेरी करवटों को महका कर अधूरी मुरादों को पूरा कर इन बुझी शमाओं को रोशनी से भर देता है। जाने क्यों मेरी उम्मीदों को जगा देता है यूं ही

एक ऐसा सच जिसे शायद आज तक कोई न जान सका, और यह भी अपनी जगह सही है, जीवन है पानी का बुलबुला। मुट्ठी में रेत की मानंद जैसा यह जीवन कब फिसल जाए हाथों से हर कोई है बेखबर। जीवन की इस पहेली को न कोई समझा है और न कोई जाना है।

यूं रुक गई कदम, तो शायद बहक गई भटक गई, ये रास्ते आखिर जाती कहां है? क्या मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है? बेशक सफर लंबा हो पर दौराने सफर साथी तो मिल जाना चाहिए, जो कभी पीछे छूट गए थे वो शायद लौट के नहीं आएंगे, शायद लौट के नहीं आएंगे, लेकिन नई परिंदे हमारे साथ उड़ान तो भर सकते हैं।

जब बात चली है तो आज मेरी सितारों से बात हुई। सितारे जो आसमानों में जा बसे हैं, तन्हा तन्हा खामोश वजूद लिए दबी दबी मुस्कुराहटों का जेवर पहने हुए, खुशबू का लिबास मोहब्बतों की चादर ओढ़े। सितारे जो गुप अंधेरों में तैरते हैं बादलों के साथ, रात भर पहरेदारी में मसरूफ, आसमानों की निगहबानी में मुंतजर, हर पल हमारी मुलाकातों में शामिल ये सितारे रहते ही

फिल्म गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत।